وضرب لنا مثلا ونسي خلقه

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही कि नहीं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ दिया जाएगा तो फिर तुम मुकाबला न कर सकोगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं, उन पर गिरफ्त न कर मालिक।

0: We'll be back after this short commercial break.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकनीक यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है जो

0: खतरा आपकी शनाख्त आपकी पहचान
1: 101 FM। सूरज की किरणें हर सुबह लाती है एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
2: हमसे है रोशन ये जहां।

0: love you, Pakistan. Pakistan.
1: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Saturday 20th of Zilhijjah, June the 6th, 2026. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Deputy Prime Minister has emphasized on protecting consumers' interests during the privatization of power distribution companies. The Economic Coordination Committee has approved allocations worth billions of rupees for development, security and infrastructure projects. The government has reduced the price of petrol by 4 rupees per litre. Pakistan has categorically rejected India's baseless remarks regarding the upcoming elections in Gilgit-Baltistan.
2: 101 FM.
3: Hey, we'll be back after this short commercial break.
4: किसी भी किस्म की ज्यादती जबर या इस्तेहसाल को रिपोर्ट करने के लिए वजारत इंसानी हुकूक की हेल्पलाइन 1099 यानी 1099 पर कॉल करें और मुफ्त कानूनी मशावरत और मदद हासिल करें। ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान के तआवुन से पेश किया गया।
5: तहफ्फुज़ हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा मखवी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: This is FM 101.
7: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
8: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
3: On the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
4: आप सुन रहे हैं FM 101, अबल बल्ले चाबो शाबा।

0: शुक्रिया, आपने ऐसे मनोवन ट्यून किया।
1: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा में यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मुतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से वे फॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।

0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: हर इंसान का हक है कि उसकी ज़िंदगी रोशनियों और उम्मीद से भरपूर हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया और इसकी रंगीनियों को देखने और महसूस करने में ही जिंदगी का लुत्फ़ है। अलशफा ट्रस्ट पिछले 34 साल से इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल के क़याम का बुनियादी मकसद उन लोगों तक रसाई है जो इलाज का खर्च उठाने के मुतहम्मिल नहीं है। अपने ज़कात और अतियात अलशफा ट्रस्ट को दें और किसी की ज़िंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 1,40,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है। अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करना है ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम न रहे। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आई हस्पताल लाहौर के तवस्सुत से अब एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने ताकि हर आंख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।
2: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकनी यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
0: I love FM 101.

0: Fruit Socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.
5: FM 101.
6: FM 101.
7: FM 101.
8: 101. 101.

0: This is FM
1: 101. 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है. ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है. लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं. तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं. नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है. तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं. नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं. 13 जून अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
3: शुक्रिया, आपने FM

0: This is FM 101.
1: सोचिए जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में। 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 की

This is FM 101.

0: ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आजम ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के अमल में सार्फीन के हकूक के तहफ्फुज पर जोर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी कर दी है। मारूफ ड्रामा और अफसाना निगार अनवर सजाद की 7वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मालदीप में डायमंड जुबली 4 मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने मालदीप को 3-0 से हरा दिया है।
1: कम अज कम 25,000 रुपए जमा कराना लाजिम होगा स्कीम में शामिल।
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायद पुलिस के मुतल्लिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: दिस इज FM 101.1।
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबाउट FM 101.1।
6: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर।

0: FM 101.1।
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: E-Power, the ultimate power solution.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: This is FM
1: 101. सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
3: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया.

0: now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों के निशकारी के अमल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मुआवनत से गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान कारोबार दोस्त माहौल को फरोग हासिल हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के तहत इंसानी बहरान बदस्तूर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान की आयशा बलोच ने श्रीलंका में एशियाई खेलों के रेसलिंग फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी।
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतलिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफादे आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: Under the

0: 오케이.
1: 오케이.

0: Very good, guys. Good, guys. Good.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर मुल्कत ने स्वीडन के साथ बाहमी मुफाद पर मबनी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा किया है। नायब वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों के निजकारी के अमल में शफाफियत और सार्फीन के मुफादात का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने की हिदायत की है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मुआवनत से मुल्क में गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान कारोबार दोस्त माहौल को फ़रोग़ हासिल हुआ है। पाकिस्तान की आयशा बलोच ने श्रीलंका में एशियाई खेलों के रेसलिंग फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी ने स्वीडन के साथ बाहमी मुफाद पर मबनी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और इन्हें वसअत देने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा किया है।
1: Be back after this short commercial break.
2: तहफ्फुज़ हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मखवी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफादे आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: This is FM 101.1.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Free socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.
5: FM 101.
6: FM 101.
7: FM 101.
8: 101. 101. 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Free socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: 4 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Shahzad Ghori. First, the headlines. President has reaffirmed Pakistan's commitment to further strengthen mutually beneficial ties with Sweden. Minister for Overseas Pakistanis and Director General in International Labour Organization at a meeting in Geneva have discussed promoting skill development in Pakistan. Pakistani Hujjaj have commended Government of Pakistan for ensuring excellent arrangements during Hajj this year. Pakistan won bronze medal in Under-18 Asia Cup hockey tournament, beating Malaysia by 3-0 in Japan today.
1: This is FM 101.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: तहफ्फुज़ हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मखवी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: This is FM 101.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

शुक्रिया, आपने FM 101 क्यों

0: E-Power, the ultimate power solution.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून, अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
3: शुक्रिया, आपने FM 101
2: किया. 13 जून, पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: सुनते रहिए FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: खवातीन और हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। जरा तवज्जो फरमाएं।

0: तुम्हें कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा। मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: 13 जून, PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
1: सुनते रहिए FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
0: सुनते रहिए FM 101।
1: 13 जून, पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: वो एक्चुअली
1: जी
0: जी वो एक्चुअली अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना कि सुरमई रंग बहुत पसंद है आपको।
2: आपकी एक अमानत थी, वो लौटाने आया।
3: शदीद मोहब्बत करता हूँ आपसे।
1: तो तुम खुशी खुशी रहो यहाँ पे, नहीं रह रहे
4: हम भाग नहीं सकते।
5: उफ, क्या मेरी जान, शादी इज अ कॉम्प्रोमाइज।
6: छुट्टी नहीं मिली मुझे।
1: बार बार एक ही थे।
7: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
8: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो क्या

मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
2: इमरान अनाहित से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम मुतालिका इदारों के दरमियान करीबी राब्ते की जरूरत पर जोर दिया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल के फरोग के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में जारी फौजी कार्रवाई से मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। आज जापान में 18 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने मलेशिया को 3-0 से हराकर कांसे का तमगा जीत लिया।
3: This is FM 101.
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
3: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
4: हमसे है रोशन ये जहां,
5: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: चलो चलो।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल जहन्नुम बारास्ता जन्नत बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
0: सुनते रहिए FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुनते रहिए FM 101 सुनते रहिए FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101।
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: This is
1: रात के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम मुतालिका इदारों के दरमियान करीबी राबते की जरूरत पर जोर दिया है। नायब वज़ीर आज़म ने मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल के फरोग के लिए हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वजीर और आर्मी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल ने जनीवा में मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। और गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। और अब इन खबरों की तफसील। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज लाहौर में मुलाकात की। उन्होंने मुल्क में अमन अमान और सिक्योरिटी की मजमू सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वजीर दाखिला ने वजीर आज़म को मुल्क में अमन अमान के क्याम और शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए किए जाने वाले इकदाम के बारे में ब्रीफ किया। इस मौके पर वजीर दाखिला ने वजीर आज़म से अपने आइंदा तहरान के दौरे के हवाले से मशावरत की और उनसे रहनुमाई हासिल की। इस मौके पर वजीर आज़म ने मुल्क में अमन अमान के क्याम और सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के लिए तमाम मुतालिका इदारों के दरमियान करीबी राबते और मरबूत हिकमत अमली की जरूरत पर जोर दिया।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: There's music, and then there's magic. One above FM 101.
5: Sur aur Sangeet. साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101।
6: सुनते रहिए एफएम 101। 101।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर दीजिए। आपका बहुत-बहुत

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे पाकिस्तान, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक खुशबाश उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे हमारे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं एफएम 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं जीशान नासिर, रावलपिंडी इस्लामाबाद, सरगुदा साइफाल, एजेके मरियाजात, कश्मीर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, इनफैक्ट पूरी दुनिया में www.radio.gov.pk के थ्रू, जहां पर आप हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली बात करते करते माइक जो है वो गिर गया था, तो हम माइक को उठा रहे थे। कितना गिरोगे यार, और कितना गिरोगे? 12:06:55 पाकिस्तान का मियारी वक्त, इतवार का दिन शुरू हो चुका, 7 जून 2026। और सुनाएं क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? जिंदगी कैसी गुजर रही है आपके? भाई दबी जनाब, ईद पर दो मूवीज रिलीज हुई हैं, एक है लव दी सॉन्ग और दूसरी है जुम्बेड। लव दी सॉन्ग में है जनाब फरहान सईद, और जो फीमेल है न्यू है, मुझे एक्चुअली उनका नाम नहीं पता, अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। और जो जुम्बेड है उसमें है हर दिल अजीज जनाब फहद मुस्तफ़ा, और मैंने दोनों देख ली हैं। कैसी हैं मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, ऑब्वियसली स्टोरी तो शेयर नहीं करूंगा, अदरवाइज जो फिल्म मेकर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं ये आपको जरूर बताऊंगा कि कौन सी पिक आपके लिए हो सकती है अगर आप लोग मूवी देखने का प्लान कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, या फिर अकेले भी देख रहे हो। बाय द वे आपको मजे की बात बताऊं कि जिंदगी में सबसे मजबूत आदमी वो होता है जो अकेले रेस्टोरेंट में खाना खाए जा गए या फिर मूवी देखने अकेला जाए, मैं दोनों ही काम करता हूँ। मजबूत होने का तो नहीं पता, लेकिन मजा बड़ा आता है यार, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता ना। पानी ला दो, ये पॉपकॉर्न ढूंढो ना, वो ढूंढो से मुराद है वो खाते खाते। अच्छा, मुझे आज तक की बात समझ नहीं आई, अगर आप लोगों को समझ में आई है, कोई सुन रहा है और मुझे कॉल करके या मैसेज करके या फेसबुक पे कमेंट करके बताना चाहे। मैं अक्सर जाता हूँ जब मूवी देखने, तो हमारे साथ जो कपल्स बैठे होते हैं, खास तौर पे अगर हम साइड की बात करें, कॉर्नर सीट्स की बात करें, उनके पॉपकॉर्न हमेशा घूमते हैं और वो हमेशा ढूंढते हैं पॉपकॉर्न। मतलब मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। मैंने बहुत दफ़ा, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैं अकेले गया हूँ फिल्म देखना, और जब जब मैं फिल्म देख रहा होता हूँ, मैं ये नोटिस करता हूँ कि यार ये कोने पे बैठने वालों के पॉपकॉर्न क्यों घूमता है और वो लड़का क्यों ढूंढता है पॉपकॉर्न। मतलब एक दो पॉपकॉर्न चलो गिर भी गए तो चींटियां खा लेंगी, इतने इंपॉर्टेंट है पॉपकॉर्न के आप ढूंढते हैं, पता नहीं क्यों ढूंढते हैं। आपको पता है तो मुझे जरूर बताइएगा। है जनाब, अगर आप हमें कॉल करना चाहते 051-90-2540। मैं कह रहा था कि अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो 051-90-2540 अगर आप इसके अलावा हमें कॉल करना चाहते हैं, टेलीफोन लाइंस आर ओपन नाउ। मैंने पिछले प्रोग्राम में एक भी कॉल नहीं ली थी, सो आज जरा हम प्रोग्राम में कॉल्स भी लेंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेंगे, मजा भी आएगा। यार मुझे बहुत सारे लोग इंस्टा पे मैसेजेस करते हैं, और आजकल मैंने एक नई रीत बना ली है, और वो रीत ये बना ली कि बहुत सारे लोग अगर मुझसे सवाल कर रहे हों इंस्टा के ऊपर, तो मैं चूंकि बहुत ज्यादा टाइप करने से कतराता हूँ, या मोस्टली मैं जब मैसेज पढ़ रहा होता हूँ तो अमूमी तौर पे या मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, या मैं किताब पढ़ रहा होता हूँ, या कोई और ऐसा काम कर रहा होता हूँ, कि उसको छोड़ के मेरे लिए मैसेज को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं उनको कह देता हूँ कि आई विल आंसर इट इन द शो। अभी मैंने पता नहीं कितने बंदों को कह चुका हूँ, और सारे इंतजार कर रहे होते हैं कि अच्छा शो हुआ है, हमारे सवाल के ऊपर बात होगी ना। और मैं इतना वलकड़ू, मैं इतना वलकड़ू, मैं असल में छोटा हूँ ना, मैं छोटा काका हूँ, कहते मैं तो अब्दुल बारी हूँ, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, अच्छी बातें करता हूँ, दुआएं पढ़ता हूँ। सो मैं खैर अब्दुल बारी हूँ या नहीं, लेकिन मैं जिशान नासिर होते हुए भी अच्छा बच्चा जरूर हूँ, इसमें तो कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। तो वो अर्ज मैंने आपसे ये करनी थी कि वो तमाम तर लोग जिनसे मैंने कहा कि आई विल आंसर इन द शो, सो प्लीज अगर आप अभी सुन रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि मुझे आप सब लोगों के सवाल याद होंगे और मैं सबके जो है वो फर्दन फर्दन जवाब दूंगा। मैं सिर्फ अब उनके सवालों के जवाब दूंगा या उनके सवालों के ऊपर गुफ्तगू करूंगा। ये डजंट मैटर कि आप चाहते हैं कि आपका नाम आए या ना आए, वो कोई टेंशन वाली बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लिए बिना हम उसके ऊपर डिस्कशन करें, तो फिर मैसेज से जब सेंड करो तो ऊपर टॉप पे पहली लाइन ये लिखना कि आप नाम ले लें या ना लें, ठीक है, उसके बाद बाकी बात करना। क्योंकि बहुत सारे लोग सारा मैसेज लिख देते हैं, हम भी सारा मैसेज पढ़ देते हैं, और एंड पे लिखा होता है मेरा नाम ना लीजिएगा, तो भाई हमें क्या इल्हाम होगा कि एंड पे आपने ये लिखा है।
तो हाँ, वो मैं कह ही रहा था कि जितने लोगों को भी मैंने कहा है, और अगर अभी आप सुन रहे हैं तो आप वो मैसेज दोबारा कर दें, ताकि मेरे इंस्टा आईडी के ऊपर जो मैसेजेस आते हैं उसमें वो टॉप पे 3-4 मैसेजेस, 5-6-7-8 जितने भी सवाल हैं वो आ जाएं, ताकि उनको पढ़ के जवाब देना आसान हो। अगर इंस्टा है आपके पास तो क्या ही बात है, अगर इंस्टा नहीं है तो लिख लो जिशान नासिर 26। 26 असल में मेरी बर्थडे है ना जी, यानी कि ZEE बन गया जी, SHAN बन गया शान, यानी कि जी तिशान, जी शान, NASIR है जी मेरे अब्बू का नाम, जिनको आजकल मेरी शादी की बड़ी जल्दी है जी। तो जिशान नासिर हो गया। अब 26 आप कहेंगे 26 क्या है, 26 जना मेरी बर्थडे जी, 26 अगस्त को मैं पैदा हुआ था जी। So, मैं पैदा हुआ था जिशान नासिर 26, तो मैंने कहा यार चलो कोई ऐसा रख लेते हैं कि जो याद रह जाए। So, अगर आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ZEE SHAN NASIR 26 जस्ट मैसेज मी अप देयर। और अगर कॉल करना चाहते हो तो मैं कहना चक दे पट्टे नप दे किल्ली 0511111001 टेलीफोन नंबर अब ओपन है, लाइंस ओपन है, आप कॉल करें, मैं कॉल लेने के लिए यहां पर बैठा हूं। उसके साथ साथ 0519002540 ये दो नंबर है, 0511111001 और 9202540। जिशान रोकड़ी की आवाज, असा सिरदा सौदा कर बैठे। इसमें एक लाइन है कि नाल माही दे लड़ियां अखियां, अखियां शोदियां डाडियां फसियां। यहां पे जो शोदी का मतलब है वो लिया जाएगा बिचारी का, ठीक हो गया। चलो गाना सुनो फिर वापस आते हैं। पानी फड़ा भाई मुंडिया।

0: मिक्स करो, थोड़ा सा मिक्स करो, पानी की बात कह रहा था। और यार ठंडे और गर्म पानी को मिक्स करो, आप क्या समझ रहे हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो,
1: वालेकुम अस्सलाम जनाब, मोहम्मद नवाज सिद्दीकी पिशावर से, बेटा तेरा क्या हाल है?
0: मैं ठीक हूँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? क्या हाल है आपके?
1: अल्लाह को भला करो, अल्लाह को भला एहसान, आपकी दुआएं हमारे साथ,
0: मैं तो आपके साथ। अरे अरे अरे, क्या बात है सर, क्या बात है। मैं कहता हूँ आपका लेवल ही बड़ा आप है। सर मुझे बताएं पेशावर का मौसम कैसा है? यार छोड़े सारी बात है, पेशावर का मौसम कैसा है? संगे चार,
1: पेशावर का मौसम बहुत खूबसूरत है।
0: क्या
1: पेशावरी हूँ?
0: अच्छा,
1: मौसम बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा मौसम है। मौसम सारे अच्छे है क्योंकि अल्लाह जो बनाए हुए।
0: सही बात,
1: अल्लाह ताला जो चीज बनाता है वो गलत नहीं होती, वो अच्छी होती है।
0: सही बात, सारी जिंदगी गल अजी कर लैन गई, बस कर यार। और सुनाए सर, अब मैं कह रहा हूँ की खाने में क्या खाया सर आपने? लेकिन ये भी नजर आया, चलो ये भी ठीक है। खास तौर पर इसमें कहता है कि
2: न कोई ऐसा तलबगार हो, न यूं चूड़ियों की ये झनकार हो, रो रो राजा जरा धीरे धीरे आ।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम जी, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम, हेलो। यार देखो मेरी बात सुनो, जब भी कॉल करो तो रेडियो से दूर होके कॉल करना, क्योंकि चलो मेरी तो फिर भी थोड़ी बहुत बेहतर आवाज है जो मैं रेडियो कर रहा हूँ। आप लोग अक्सर अलो करेंगे तो ना आप खुद डरेंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है, हैं हम सारे एक जैसे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आपको सुन रहा होगा देखो ये तो गुरूर है, गुरूर नहीं है भाई, समझाने का तरीका है, पब्लिक समझती भी नहीं है। मतलब ये मैंने अपनी आंखों से देखा है पाकिस्तान में। आप किसी से कहें ना कि यार सर प्लीज यहां से ना जाइए, यहां से चले जाइए, क्यों ना जाए भाई, वजह नहीं, यहां पे क्या है, क्या वजह है, वही उनको कहे ना सर यहां से नहीं जाना, ठीक है ठीक है, किधर से जाना है ये पता नहीं। हमारा रवैया है, हम इखलाक अच्छा क्यों नहीं रखते।

0: आरू चौधरी कह रही है म्यूजिक थोड़ा लाइट सा प्ले करे, आई मीन लॉफी और डीप बीट से कौन सी वाली होती है यार, मुझे थोड़ा सा बता दो। मैं इतना अगर म्यूजिक को समझता होता तो मैं तुम लोगों के साथ बैठता यहाँ पर। ऑब्वियसली मैं किसी अच्छे सिंगर्स की महफिल में इस वक्त बैठा होता ना, पाकिस्तान में इतने कॉन्सर्ट्स होते हैं, इतनी महाफिल होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी महाफिल हो रही होती है, मैं कहीं वहाँ पर होता भी, मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ थोड़ी गपशप लगा रहा होता रात को 12:18 पे। जरा मुझे बताओ कौन सी होती है ये जो लॉफी बीट्स, कौन सी होती है, जरा ढिमचुम ढिमचुम ढिमचुम ढिमचुम वाली कौन सी, कौन सा बताओ ना, मुझे एजुकेट करो, मैं एजुकेट होना चाहता हूँ, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम कॉलर है ना, अगर मेरे इतने करीब ना हो तो मैं बर्बाद कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, यार या तो ये इसका मसला है या तो ये इसी का मसला है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो,
1: वालेकुम अस्सलाम, हर बात है जिसकी प्यारी, हैदराबाद से कॉल करते हैं आपको शाहिद अंसारी।
0: अरे क्या बात है चचा, कमाल, क्या हाल है?
1: अरे मामू बेटा मामू,
0: अरे मामू कमाल, कैसे हैं आप? ठीक है, शादी करूँ जल्द अज जल्द, और मैं चाहता हूँ की मैं शादी ना करूँ। आप ऐसा करें, आप फौत हो जाए, हमें बहाना मिल जाएगा की मामू फौत हो गए तो हम शादी। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, देखे आप मेरे से, आप मेरे से प्यार करते हैं कि नहीं करते मामू, पहले तो ये बताएं, आप मेरे से सच्चा प्यार करते हैं कि नहीं करते? मैं कहता हूँ आप मेरी पप्पियां चप्पियां ले लीजिएगा, लेकिन मसला ये है कि देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं शादी अभी ना करूँ, अब्बा चाहते हैं कि मैं शादी करूँ, तो अब आप मेरे लिए कुर्बान, आप थोड़ा सा फौत हो जाए ना, क्या फर्क पड़ता है, इतनी तो जिंदगी गुजार ली, आगे कौन सा आपने कोई एटॉमिक बम बना लेना है कहीं और। अच्छा अच्छा, नहीं वो तो हम मुसलमानों पे पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, और सुनाए अंसारी साहब, छोड़े यार सारी बातें, अंसारी साहब मजे का था, अच्छा लगा आपको, अच्छा लगा आपको, अच्छा लगा आपको, दुआ की, दुआ की आपने या नहीं, दुआ की या नहीं ये बताएं, दुआ की है कि नहीं की? वो दाद कहता हूँ मैं ढोलकी के, मैं कहता हूँ कि वो दाद ना दो, दाद ऊपर से आएगी, दुआ तो कहता हूँ दो यार, इसीलिए कह रहा हूँ तुम्हारे एक्सपायर हो गए सर।
1: कॉल लेगा ना,
0: अबे सुनाओ यार, सुनाओ दो अजियत हमें, जितनी अजियत दे सकते हो दो हमें।
1: दामन लगिया मौला तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदर में तो तेरिया, दामन दी लजपा दी सी सिमाणी लाल, दामन दी लजपा दी सी कलंदर लाल, मैं तो तेरिया मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला तो तेरिया।

हम जिक्र हैदर यूं ही करते रहेंगे, तू फतवे लगा और लगा और लगा और सर से पांव तलक खूह में नहा के जाता हूँ, सर से पांव तलक खूह में नहा के जाता हूँ, फिर भी मेरी माँ कहती है मेरे लाल जरा और जरा और जरा और। अब जिक्र हैदर यूं ही करते रहेंगे, तू फतवे लगा और लगा और लगा और।

0: हरोई कह रही है वो लगा देना, वो जो है सैया कैलाश खेर। बेटा तुम मेरे ख्याल से पहली दफा रेडियो पाकिस्तान सुन रही हो, हम यहाँ पे खेर अंकल के गाने नहीं लगा सकते, हम सिर्फ पाकिस्तानी गाने लगा सकते हैं। आतिफ असलम का कोई गाना हो या फिर राहत भाई का कोई गाना हो। हम राहत भाई ऐसे कह रहे, मेरे कजन है बड़े। बार कैफ कॉलर लेते हैं ना यार, अगली बात पर बाद में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो।
1: वालेकुम सलाम विशाल भाई, क्या हाल है? खैरियत
0: है? हाँ खैरियत है, खैरियत है। आप सुनाए, आप ठीक हैं?
1: बस आपका शो सुन रहा हूँ यार भाई,
0: बड़ी मेहरबानी। अरे सर सर सर, हिजरत कॉलोनी, क्या हाल है भैया, ठीक हो?
1: तो मेरे मतलब ये निशान है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या
1: हमारे हमारे वो है वो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, और अच्छा अच्छा अच्छा, और सुनाएं कोई कोई अच्छी बात हमें सुनाएं सर। मुझे क्या लेना देना आपके किसका नाम ज़ीशान है, कोई अच्छी। अब पाकिस्तान आपको सुन रहे हैं, कोई ऐसी बात करें जो आपके लिए सदका जारिया हो अंकल जी।
1: नहीं, आपका हम नाम है
0: ना, मेरा हम नाम तो पूरा पाकिस्तान। अच्छा अच्छा अच्छा, और सुनाएं कोई कोई अच्छी बात हमें सुनाएं सर। मुझे क्या लेना देना आपके किसका नाम ज़ीशान है, कोई अच्छी। अब पाकिस्तान आपको सुन रहे हैं, कोई ऐसी बात करें जो आपके लिए सदका जारिया हो अंकल जी।

0: हम अभी अपने हाथ में ब्लेड मारेंगे, हम आपके मत्थे लगेंगे, आप हमें गाना सुनाएंगे। नहीं नहीं मैंने नहीं, मैं आपको आपके साथ गाता हूँ ना, मैं गाता हूँ, आपने पीछे पीछे गाना है, ठीक है? यार कोशिश तो करें ना यार, आप हमारी मोहब्बत के लिए ये भी नहीं कर सकते, हम आपकी मोहब्बत में रात 12:25 में सब कुछ घर बाहर छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हमारी मोहब्बत में ऐसे भी नहीं कर सकते। हाँ चले मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ आपने गाना है, चले 3-2-1 गो। पादे चिट्टे दिने माया नेरवे, हाँ हाँ गाओ गाओ। नहीं नहीं ला दे, नहीं नहीं ला दे चिट्टे दिन कौन लाता है यार, ला दे नहीं, पादे पादे पादे चिट्टे दिने माया नेरवे, ला नहीं यार तू लाने पे, पादे पादे पादे मतलब पादे चिट्टे दिने माया नेरवे जिथो मर्जी न छेड़े। हाँ ये सुनाए ना सर, सुनाए ना, चले सुनाए
1: यार, मेरे कुछ दोस्त सुन रहे होंगे आपको,
0: आप भाई उनको वालेकुम अस्सलाम। हाँ ठीक है ठीक है, सुनते रहे सुनते रहे, बहुत मेहरबानी सुनने के लिए। संगे संगे का नमड़ा हैदरियम कलंद्रम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यजदानम बाद अज़ली मंदान स्तम अली वलीउल्लाह ज़ज़ल गुफ्तम कलंदरी मन कमर बस्तम मौला हैदरियम हैदरियम हैदरियम
2: पाड़ बिस्मिल्लाह सिफ्त मैं तेरी पाड़ बिस्मिल्लाह
0: बहिश्त बर दर जन्नत बखते सब्ज़े जली
2: मुर्शिद लाल
0: शाफी रोज़े कयामत मुहम्मद अरबी खुदा गवाह है कि बाद अज़ मोहम्मद अरबी

0: आप एकदम डिलीवर हैं सर,
1: है ना, आपकी भी नहीं हो रही,
0: मेरी भी सेम।
1: अच्छा अच्छा, नहीं मैं तो चले, लेकिन मैं तो चले सर अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी कमा रहा हूँ ना, आप तो मैं भी गरीब। अच्छा अच्छा, नहीं मैं वैसे ही जनरली एक बात की थी, आप तो गुस्से ही कर गए। अच्छा तो वो नहीं नहीं, मैं आपका तो चले, देखिए मेरा तो अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी शादी हो रही ना, तो मैं तो हैंडसम भी हूँ ना सर। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही बात करूँ, मैं कोई ऐसी वैसे नहीं है, नहीं मैं वो कह रहा हूँ कि अगर अच्छा नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपकी मतलब चले मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैं तो माशाल्लाह बोल भी अच्छा लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सो और सुनाए सर, छोड़े सारी बातें यार, छोड़े सारी बातें, आपका भी दिल टूटा हुआ है और मैं तो ऐसा दिल रखता ही नहीं हूँ जो टूटेगा। सो हम कोई गाना गाएं यार, गाना मुझे क्यों लग रहा है कि आपको गाने माइये टप्पे वो जो हजारे वाले के अंदर चिट्टे चने दी चालनी। हाँ आगे आगे आगे
0: आगे आप बोले थोड़ा सा।
1: लेकिन यार वैसे आपस की बात है कि अगर मेरा चलो टूटा है रिश्ता, तो मैं तो सुरीला भी हूँ, तुम तो बड़े बेसुरे आदमी हो यार। अभी आप देखे ना, चले वो चिट्टे चने दी चालनी आती, थोड़ा सा माइये गाए ना यार मेरे साथ, एक दफा आप गाए फिर यहाँ से मैं गाऊंगा, फिर आप गाएगा फिर मैं गाऊंगा, ठीक है। वो आता है छल्ला मेंढा जी ढोला, वो आता है ना,
0: आते थे थोड़ी देर पहले, मुझे काफी आते थे, अभी भूल गया।
1: क्यों डर गए?
0: नहीं डर नहीं गया,
1: तो फिर भूल क्यों गए, नर्वस हो गए हो?
0: लाइट,
1: तो बिजली पे चलते हो?
0: जी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है, तो सेल डाल लो, सेल डलवा लो ना। अच्छा हाँ जी, अच्छा चले खैर चले। हाँ सर, छोड़े कंप्लेन यारा, छोड़ ना यारा, और मेरी जान के टोटे, कोई अमल दरामद होना नहीं, फायदा बता भी दोगे तो अमल दरामद तो होगा नहीं, छोड़ देना इस बात को। अच्छा
0: थोड़ा सा आप आगे हमको बोल दीजिए, वन वन जो संवाद ही नहीं किया था, यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी,
1: तो अभी कैसे सुन रहे हैं फिर आप?
0: ये फ्रीक्वेंसी पे आप तो पिशावर वाले दे रहे हैं, तो वो सुन रहा हूं।
1: अरे पिशावर वाले कितने अच्छे हैं ना, मुझे दे रहे हैं इस दफा।
0: जी जी, आपको दे रहे हैं, बाकी किसी को नहीं दे
1: रहे। देख ये मोहब्बतें हैं सर, मोहब्बतें हैं ये सर, हर मैं असल में, आपने गाना नहीं सुना, लैला मैं लैला ऐसा हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। अच्छा खैर एनीवे सर, वो आता ना छला मेरा जी डोला, एक दो तो आते ही होंगे सर, थोड़ा सा कसम तो तोड़ के जाए ना, हम कसम तो खा सके कि आपने माइये पढ़े हमारे साथ, गाए हमारे साथ, ठीक है।
0: अच्छा मुझे थोड़ा सा आगे
1: तो मैं पहले पहले वाला मैं पढ़ता हूँ ना, फिर पहले मैं पढ़ता, और रुक ना यार आप, और रुक ना। हाँ हाँ देखिए, मैं पहले सुनाता हूँ, एक गौर से सुन ले, थोड़ा सुकून कर मेरे भाई, जिंदगी में आ गया तो सुनना भी सीख, थोड़ा सा मैं गाता हूँ फिर आप सुन ले, फिर उसको आप रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है। कहता छल्ला मेंढा जी में ढोला, ओए छल्ला मेंढा जी में ढोला, कोई विकर्ण

0: हाँ सुनाओ।
1: चलना क्या बोला आपने? चलना मेरा जी देना
0: मुड़ो जरा
1: देखो ना हम लोग आया। अच्छा
0: हाँ
1: चलना मेरा जी डोला कोई देखण मलो आया जो बर्बाद की तई मेनु मैं कण लो
0: वाह वाह वाह वाह वाह मैं कहता हूँ वाह वाह वाह बल्कि अन्य वाह यार मेरा मूड बन गया माइयों का। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ 2000 रुपए इनाम दूंगा कोई कॉलर अगर आए और माइये मेरे साथ गाए और मुझे माइयों में हरा जाए 2000 रुपए नकद इनाम है। इसी टाइम ट्रांसफर होगा एक सेकंड की भी देरी नहीं होगी। अगर मैं हार मान गया उसी टाइम पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे पूरे 2000 रुपए। शर्त यह है कि मुझे हराना है माइयों में। है कोई तो आए भाई
2: तेरे मेरी गली के रोज ही फेरे।
0: पहले मैंने सोचा 5000 रुपए नाम बोलता हूँ फिर मैंने कहा नहीं वो कॉल के ऊपर होगा तो अगर गूगल खोल के सामने रखा हुआ तो फिर क्या होगा। अगर चलो चीट से 2000 जीत भी गया तो इतनी बड़ी रकम नहीं। हम हर चीज जानते हैं। वो कहता है कि वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे अब हम देव हैं जिनों के भी। हाँ।

0: सजनता नहीं छुट दे जिना सख्त कानून होवे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन है, कहाँ से?
1: जी मैं लाहौर से रिमशा, भाई कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ
1: रिमशा, आप ठीक होंगे?
0: हाँ मैं ठीक हूँ रिमशा, मुझे बताओ तुम्हें पता है प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं?
1: जी जी तब तक सुना रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे टपी नहीं आती, लेकिन मेरे उन्हों को टपे आते हैं।
0: तुम्हारे उन्हों को आते, फिर उन्होंने उठा लो, उन्होंने को सोड़ लाइने।
1: अब वो कहते नहीं कि तुझे काल कोई नहीं चकते हो।
0: हाँ तो वो आप उनको मतलब आप आपके पास नहीं है, वो कैसे उन्हों जो आपके पास ही नहीं है? छोड़ यार क्या फायदा तेरा, हमारा तो चल कोई है नहीं बेटा, रिमशा हमारा तो बेटा कोई है नहीं, तो हम रात को 1:15 रेडियो कर रहे हैं अकेले बैठ के, तुम्हारे उन्हों हैं भी और तुम्हारे पास नहीं, तो बड़ी ज्यादती की बात है बेटे। अच्छा रुखसती, अच्छा नहीं हुई तो पहले बताओ ना यार आप उन्हों। अच्छा तो आप पास है, कुछ हो सकती है कोई बात, कोई वो जो कौन सी कॉल होती है कॉन्फ्रेंस कॉल टाइप, कुछ बीच में नहीं हो सकता?
1: नहीं वो खुद कॉल में ला लेते हैं,
0: खुद कॉल में ला लेते हैं, तो क्यों नहीं मिला?
1: आप कॉल पिक करते रहे ना, तो उनकी भी कॉल साथ साथ मिल जाएगी, फिर वो भी आपको टिप्पे सुनाएंगे, उनके भी टिप्पे बहुत ज्यादा आते हैं।
0: मेरा ख्याल से उन्होंने आपको टिप्पे सुना के इंस्पायर किया था ना?
1: नहीं टिप्पे नहीं, मुझे मैं टिप्पे नहीं सुनती उनसे।
0: क्या सुनती है हमें बताएं,
1: टिप्पे भी आते हैं, गाने वगैरह हर चीज, नाती वगैरह भी सब कुछ आते हैं।
0: उनसे आपने क्या सुना था कि आप इंस्पायर हुई थी, हमें बताया था कि हमारी भी जब कहीं पर कोई दिल जोई हो तो?
1: क्या मैंने कोई सुना तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अच्छा। सिर्फ बातें,
0: अब बहरी तो नहीं है,
1: उनकी प्यारी है अंदाज, उनका प्यारा है
0: अंदाज,
1: दिल के
0: तो
1: अच्छे हैं,
0: दिल के तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा चले, अब वो कहते हैं कि
1: जब बंदे शो में शायद कॉल भी की थी एक बार, उन्होंने बोला था कि आप रिमशा को जानते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने क्या कहा था, मुझे याद नहीं है, बता दो जरा मैं, ताकि आज कॉल आए तो मैं वही अपना बयान से।
1: रेडियो पे ये भी बोला था कि रिमशा तुम जो है ना भाई जो है ना हमारे बहुत मासूम है, जो रिमशा है ना वो बहुत चलाक है,
0: कैसी बोला था, कैसी बातें करता हूँ, मुझे क्यों याद नहीं रहती है ऐसी बातें। एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया रिमशा, कोई गाना चाना सुनाना, कोई बात करनी है तो जल्दी जल्दी कर लो, छेती छेती कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, अगर
1: ठीक है वो ही कार मिलेंगे तो आपको वो सुनाएंगे।
0: हाँ ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज।
2: नहीं भूलेंदा डोल दी मर्जी
0: आए है कितनी खूबसूरत जुबान है, हालांकि मुझे प्रॉपर नहीं आती है, जितने सरायकी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं माजरत के साथ, मैं यकीनी तौर पर वैसी नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं देखें सही नहीं बोल पा रहा, फिर भी कितनी मीठी लगती है यार, माशाल्लाह। कहते सरायकी इतनी मीठी जुबान है, इतनी मीठी जुबान है, इतनी मीठी जुबान है कि ए दूध नू भी खीर खान देन, इतनी मीठी जुबान है, इतनी मीठी जुबान है कि अगर आपने किसी को ये भी कहना हो ना कि भाईजान आप तो पागल हैं, तो सराइकी में कहते हैं साईं तू संत बादशाह बंदे हो। अच्छा तो मैं सारिया को माइया सुड़े ना वदे ना कि खुशबख्त इजाज अहमद खान साहिबा है, इते इते करे है ध्यान, इते करे है तरवीर तानी ध्यान, इते करे है कुड़िया नु शायरी बाद सुनावे है यारा, मैं जो तो दो बजे लगा वसा है ता फिर बाकी उन्होंने शायरी सुनावे, इधर फिलहाल भाई आया है तेरा यार। जन्नत जारा, जन्नत जारा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जन्नत जारा तुसा कोई भी सुनाया ना बंदे ना, माहीन अरशद बख्तावर क्यानी तूबा अली खदीजा आ रहे शान की फैन है, जितने हो जितने हो जितने हो, आई बनजो आई बनजो आई बनजो आई बनजो। मैं हमेशा आंदा ना कि भाई तुसा कदे भी अपने जेड़े स्टैंडर्ड हा ना वो लो ना ये करने, मुंडे मैं कहंदा तुहाडे वास्ते हिक फुल नहीं, फुलां दा गुलदस्ता नहीं, पूरा बाग लवा सकने, तुसा कदे भी अपने स्टैंडर्ड लो ना उकरने। ते ओ माइया आंदा तुहानू सुने ना वदे ना, ते शायर दी कलम उठी मौला खुश रखे आबाद शहनशाह, ते शायर आंदा के हो सूहे प्यार निभा छोड़े, सुहे प्यार निभा छोड़े, असा एक फुल मंगया माया बाग लावा छोड़े।
2: निकली वे ढोल दिया
0: यार, कसम से इससे अच्छा मैं गा रहा हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो।
3: वालेकुम अस्सलाम, क्या
0: हाल है सर? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कौन बात कर रहे हैं सर?
3: मैं जयपुर से हफीज बात कर रहा हूँ, आप सुनाए कैसे मिला
0: गया? करम अल्लाह का सर, पता है हम प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं सर?
3: सर
0: माइये सर आप सुनाना चाहेंगे, माइया सुनाना चाहेंगे आप हमें सर? घूरा मार के देखिए अगला सागे तो पीछे पीछे ना रह जावे मंडा मेरा।
3: शादी आपकी हो रही है और माया मैं सुनाऊं?
0: हाँ नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, आप तो फिर आप वो नहीं करते, आप हमसे मोहब्बत नहीं करते क्या, आप मुझसे प्यार नहीं करते क्या, मैं सुंदर नहीं हूँ?
3: अगर नहीं नहीं करते करते क्यों नहीं करते भाई, शायद भाई कुर्बानी देंगे ना वो फौत होंगे तो आपकी शादी ले दे भाई।
0: यार अल्लाह उनको जिंदगी दे, यार जिंदगी दे अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती से बचाए।
3: वो तो मुझे पता है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे थे।
0: नहीं नहीं मैं देखे हम हर टाइम भाईजान ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शाहिद भाई को जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती से बचाए।
3: सही बात है, थोड़ी सी रौनक सी बन जाती है, लेकिन ये कि वो फिर जो है किसी को बोलने देते ही नहीं है, बस लगे रहते
0: हैं। सर आप हमें जानते नहीं है, आप हमें जानते नहीं है, आप हमें जानते नहीं है सर। मैं चार शायद तो मैं नाश्ते में खा जाऊं। अच्छा अभी अभी
3: भाई आज तो बिल्कुल
0: है ना सर जी, सर सर मौला के पांव से उठने वाली धूल के हजारवें हिस्से का हिस्सा है सर, वो और होते हैं जिनको लोग सुनते हैं सुनाते हैं और निकल जाते हैं, हम वो हैं जो घर तक छोड़ के आते हैं सर।
3: चलो आप ये बताएं आपको शादी में गिफ्ट क्या चाहिए?
0: सर मुझे कहने लगा रिश्ता
3: भाई आप मैंने सुना है अगर आप किसी के हाथ पे काला धागा बांधो तो उसकी शादी हो जाती है।
0: सर आप आपकी हुई हुई, मैंने ये भी सुना है कि जिसकी शादी हुई हो अगर वो अपने हाथ से मिठाई खिलाए तो हो जाती है। सर इस चक्कर में मैं इतनी मिठाई खा चुका मैं आपको बता नहीं सकता सर। और मैं आपको एक बात सुने ना, मेरी बात सर मेरे दिल के दर्द क्यों नहीं सुनता है सर कोई, आप सुने मेरी बात सर। वो मैं चला गया सर एक शादी पे, ठीक है, उन्होंने मिठाई की जगह रखे हुए थे पिस्ते मेवे बादाम, अमीर लोग थे ना, अमीर लोगों के चौंचले, ठीक है, तो उन्होंने वो पिस्ते मेवे बादाम रखे थे। अब उधर उन्होंने कहा कि अरे भाई जिशान आए, जिशान को वो दूल्हे को कहा अरे भाई इसको खिलाओ अपने हाथ से इसकी शादी होगी। उसने मुझे इतने पिस्ते खिलाए, इतने बादाम खिलाए, इतने अखरोट खिलाए, शादी तो मेरी हुई नहीं सर, गर्मी हो गई मुझे सर, अब मैं क्या करूं सर।
3: लेकिन आप
0: गर्मी होगी सर, और मेरी गर्मी छोड़ काले धागे को, यार मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कोई मेरा हाल नहीं समझता। देखे तनवीर तारी देख, तू कोई मेरा हाल नहीं समझ रहा, मैं कितनी गहरी बात कर रहा हूँ कि मैं गर्मी मैं किधर चला जाऊँ।

इतनी भर जाए आंखों में ज़िया अब्बास। मैंने असल में भी कमेंट्स देखे हैं तो हजरत अब्बास अलमदार अलैहि सलाम का नाम सुन के तमाम तर लोग जो है वो अश कर उठे हैं। मौला आपका इश्क सलामत रखे यार, मौला आपकी मोहब्बतें सलामत रखे, खुदा की कसम मौला आपकी मोहब्बतें सलामत रखे। ऐसे नहीं, मुझे फिर दो मिनट दो जरा।

माजरत माजरत माजरत माजरत माफी माफी माफी माफी माफ करे सो साईं माफ करे सो। मैं चंद लम्हे का मैंने वक्फा लिया, कुछ अरेंज कर रहा था आपके लिए। मैंने कहा मैं पढ़ जाऊं आप सुन जाएं, ना मेरे पढ़ने का मजा हो ना आपके सुनने का मजा हो। मेरा पढ़ना आखिरी हो, तेरा सुनना आखिरी हो, जिंदगी का पता नहीं छेकड़ी जिंदगी होवे छेकड़ी रात होवे। मैं पढ़ बन जा तू सुन बन जाए, याद ना करे बस जिंदगी का मुल ना पया। पढ़ूंगा यही शेर पढ़ूंगा आपसे कुछ देर के बाद, अपने तर्स पे पढ़ूंगा, अपने तरीके पे पढ़ूंगा। भरोसा है मेरे पे, भरोसा है कि नहीं है? मैं एक लम्हा अब आपका चेहरा देख रहा हूँ, कमेंट्स की जानिब देख रहा हूँ। जब शेर दो कदम पीछे लेता है तो इसलिए नहीं कि डर गया, इसलिए कि ज्यादा ताकत के साथ आएगा। अभी जो मैंने पढ़ना था तो बस पढ़ गुजरना था, इससे आगे आप किसी और मकाम पे पढ़ेंगे। आप रेडी हैं? आप तैयार हैं? बात फिर कहां से कहां जाए, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। या तो फिर आपने छेड़ना नहीं है, या तो फिर आपने छोड़ना नहीं है। जुमलों में मैं अकेला रह जाऊं परवाह कोई नहीं। अब जरा सब्र करें, अब जिंदगी जहां मर्जी ले जाए।

0: अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन हमारे साथ, कहाँ से? हेलो जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात करें, कहाँ से, नाम बताइएगा, मुखातिब करने के लिए नाम जान सकता हूँ आपका।
1: नसीम गोला।
0: हेलो नसीम साहिबा, कैसी?
1: हेलो
0: नसीम साहिबा, कैसी हैं? ठीक हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: करम अलग है। नसीम साहिबा, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं?
1: माये सुना रहे हैं।
0: तो फिर जरा सुनाइए ना, माये सुनाए हमें, कोई अच्छा सा माये सुनाए।

चलवा मेरा जी ज्वाला कोई तारा टेलीफोन दिया जिंदगी च नहीं तकिया दो घड़ियां सुकून दिया जिंदगी च

0: ਛੱਲਾ ਮੈਂਡਾ ਜੀਵੇ ਢੋਲਾ ਕੋਈ ਜਾਬ ਲੈ ਵੱਟ ਛੋੜੋ ਛੱਲਾ ਮੈਂਡਾ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਾ ਕੋਈ ਜਾਬ ਲੈ ਵੱਟ ਛੋੜੋ ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੱਕ ਛੋੜੋ ਓ ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੱਕ ਛੋੜੋ
1: ਚੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਡੋਲਾਲ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਟ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਕਾਉਂਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਕਾਉਂਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ
0: ਛੱਲਾ ਮੈਂਡਾ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਾ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਪੁਲ ਟੱਪਿਆ ਛੱਲਾ ਮੈਂਡਾ ਜਿਵੇਂ ਡੋਲਾ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਪੁਲ ਟੱਪਿਆ ਉਹ ਇਹੋ ਮੈਂਡਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਬਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਇਹੋ ਮੈਂਡਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਬਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖਿਆ
1: ਚੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਡੋਲਾ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਸਫਾ ਕੀਤੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲਿਖ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲਿਖ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀ
2: ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਪ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਨੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਪੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਨਾਇਆ ਹੈ ਗਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਥਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਸੁਣਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਛੱਲਾ ਮੈਂਡਾ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਾ ਛੱਲਾ ਮੈਂਡਾ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਈਦ ਹੋਵੇ ਛੱਲਾ ਮੈਂਡਾ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਈਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਲਮ ਦੇ ਸਾਜੇ ਮਿਲਦਾ ਢੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਲਮ ਦੇ ਸਾਜੇ ਮਿਲਦਾ ਢੋਲ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਆਪਕਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਨੇ ਕੀਆ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਫਾਈਨਲੀ ਐਸੇ ਬਈ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਆਪਕੇ ਲਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਨਸੀਮ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇਨਾਮ ਇਨਾਮ ਤੋ ਤਬ ਹੋਤਾ ਨਾ ਜਬ ਆਪ ਮੁਝੇ ਹਰਾਤੀ ਆਪ ਤੋ ਹਾਰ ਗਈ ਆਪਨੇ ਮੁਝੇ ਹਰਾਨਾ ਥਾ ਨਾ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਆਬਾਦ ਰਹੀਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਮਾਇਆ ਮੈਨੇ ਕੌਣ ਸਾ ਪੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੈਨੇ ਕੌਣ ਸਾ ਪੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੈਨੇ ਕੌਣ ਸਾ ਪੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੈਨੇ ਕੌਣ ਸਾ ਪੜਾ ਹੈ ਆ ਜਾਏ ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਸੀ ਹੈ ਬਾਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਯਹੀਂ ਸੇ ਲੌਟ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਕੋ ਫਨ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੋ ਸ਼ੁਗਲ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੋ ਮਸਤੀ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੋ ਮਜ਼ਾਕ ਚਾਹੀਏ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਜੋ ਹੈ ਜਿਗਰ ਕਾ ਨਚੋੜ ਕੇ ਆਪਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਆ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਿਸੀ ਕਿਸਮ ਕਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਚਿਹਰੋਂ ਪੇ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਲੈ ਕਰ ਆਊਂ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕਰ ਆਊਂ ਖੁਦਾ ਕਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੇਰੀ ਉਸਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਯੇ ਕਿ ਆਪਕੇ ਚਿਹਰੋਂ ਪੇ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟੇ ਲਾਊਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਆਪਕੀ ਆਂਖ ਕਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਵਾਊਂ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਆਂਖ ਕਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਹੂੰ ਬਾ ਖੁਦਾ ਅਬ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਯਾ ਆਪਕਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਗਾ ਸੋ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਅਬ ਵੋ ਯਹੀਂ ਸੇ ਲੌਟ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਵੋ ਯਹੀਂ ਸੇ ਲੌਟ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਹਮ ਸਰ ਫਿਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਸਰ ਫਿਰਾ ਚਲੇ ਯਾ ਅਬ ਚਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾ ਫਿਰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬ ਛੋੜਨੇ ਸੇ ਮੁਰਾਦ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੈ ਬਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੱਖੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਆਪਕੋ ਨਸੀਬ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਾਓ ਕੋ ਆਪ ਨਸੀਬ ਹੋ ਹਮ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੇ ਜਬ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਬ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਮੌਲਾ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਡਰ ਉਸਕੋ ਹੋ ਜਿਸਕੋ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਵੀ ਰਹੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਆਗੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰਦਾਰੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਬਾਤ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਹੈ ਅਬ ਗੁਫਤਗੂ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜਿਨ ਲੋਕੋ ਕੋ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਮੇਂ ਰਾਤ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪੈਰ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੁਮਲੇ ਐਸੇ ਕਹਿ ਦੂੰ ਜੁਮਲੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤਾ ਅਬ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ ਮੇਂ ਆ ਕਰ ਬੈਠੇ ਵੋ ਲੋਕ ਜੋ ਜੁਮਲੋ ਕੇ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੂੰ ਜੋ ਜੁਮਲੋ ਕੇ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿਤੇ ਜੁਮਲੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਮੇ ਜੋ ਕਹਿਤੇ ਹਮ ਬਾਜ਼ੌਕ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਹਮ ਜੁਮਲੇ ਕਾ ਜੁਮਲੇ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ हम लफ्जों के खरीदार हैं, हम जुमलों के खरीदार हैं, हम सोच के खरीदार हैं। बैठो अब सामने, मैं देखूं कौन कितना बड़ा जौहरी है। सो बात बड़ी सिंपल सी है, बात बड़ी आसान सी है कि इतने शानदार माहौल में, इतने हसीन माहौल में, रात का कोई आखिरी पहर, 1:03, जिसको अपने ऊपर हजरत अब्बास अलमदार अलैह सलाम के एहसानात याद हैं, मैं कहूं या अब्बास आवाज आनी चाहिए, शेर अब्बास। वहां जहां से रोका था पढ़ रहा हूं आपके सामने, इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास। ऐसे नहीं, जिंदा होके आना मेरे साथ, जाके आना मेरे साथ, जाके आना, उंगलियों को जुम्बिश देना, मैं देखूं मेरे साथ कौन कौन है। मैं जुमले कहूं, मैं चेहरे देखूं, मैं जुमले कहूं, मैं शजरे पढूं। आए हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय। इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास। खुदा सलामत रखे भाई, खुदा सलामत रखे, खुदा आपके पर्दे सलामत रखे। आपके पर्दों के जामिन का जिक्र हुआ है भाई, खुदा आपके पर्दे सलामत रखे। मैं हमेशा से ये बात कहता हूं, कोई किसी भी मकातबे फिक्र से हो, मैंने ये बात बाखुदा जानी है, समझी है, महसूस की है। हम मर्दों का तो अपनी जगह पर, लेकिन जो एक फितरी ताल्लुक हजरत अब्बास अलमदार अलैह सलाम के साथ जो मान मस्तूरात का होता है, चाहे ताल्लुक किसी भी मकातबे फिक्र से, किसी खास मकातबे फिक्र की भी बात नहीं कर रहा मैं, जो ताल्लुक जो मान हजरत अब्बास अलमदार अलैह सलाम में रात के आखिरी पहर किसी कोने में बैठी खातून जो इस फीलिंग को महसूस कर सकती है, जो इस ताल्लुक को महसूस कर सकती है, जो इस मान को दिल में समाए बैठी है, वो मेरी बात को समझेगी कि जो ताल्लुक मस्तूरात का हजरत अब्बास अलमदार अलैह सलाम के साथ है, मैंने कभी नहीं देखा किसी मर्द के हवाले से। और ये याद रखें, ये जहन में रखें, सोच ये रखें कि आपको आज इतना मान है, हाय हाय हाय हाय हाय हाय, आपको आज इतना मान है। बाखुदा मैं सोच के नहीं आया था ये होगा, बाखुदा मैं तैयारी नहीं करके आया था कि ये होगा। अब जो जहन में आ रहा है वो आपके हवाले कर रहा हूं मैं, तबर्रुक समझ के लेते जाए, जिसको जितना मिले, जिसको जितना समझ में आए, उसको उतना मुबारक। आपको आज इतना मान है, आपको आज इतना मान है, जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को तब कितना मान होगा। इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, मैं चेहरे देखता आ रहा हूं, मैं चेहरे देखता आ रहा हूं, मेरे साथ सफर करो, नतीजा निकलेगा। इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, मुझे कुछ ना दिखाई दे सिवाय अब्बास। हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, यार कोई और ले रहा है या नहीं ले रहा, मैं तो जुमले का लुत्फ लूं। मैं हमेशा कहता हूं बाखुदा बाखुदा बाखुदा, कभी सुनाए कोई ये जुमले में पहली सफ में बैठ के, तो मैं दिखाऊं कि सुना कैसे जाता है। सुनाने वाले का कमाल कहां होता है, सुनने वाले का कमाल होता है। इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, कुछ ना दिखाई दे मुझे सिवाय अब्बास। दास्ताने करबला एक जुमले में सुना सकता हूं, खुदा सलामत रखे, खुदा सलामत रखे, खुदा सलामत रखे। मैंने पिछले प्रोग्राम में एक बात की थी, ये वो मौके होते हैं जिनमें जाहिरी आंखों का काम खत्म हो जाता है, दिल की आंखें रोशन हो जाती हैं, दिल का दिल से ताल्लुक जुड़ना शुरू हो जाता है। बाखुदा मैं महसूस कर सकता हूं आपकी कैफियत, आपका इश्क सलामत रहे, आपके इश्क के सदके अता है जो भी है मेरे पास, मेरी अपनी झोली खाली है बाखुदा। इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, मौला की विला सुनकर बुलंद होने वाले हाथ, उस मौला की विला सुनकर बुलंद होने वाले हाथ जो इंतखाबे अली है, हाय हाय हाय हाय हाय हाय, जो इंतखाबे अली है। जिसको 11 साल की उम्र में जनाबे अली अलैहिस्सलाम के कपड़े पूरे आए उसको किताब इश्क में अब्बास कहते हैं। जो 9 दिन 9 लाख को अपनी आंख के रोब से रोक के रखे उससे अब्बास कहते हैं। मैं वंजा केड़े पासे होए, अब ये दुनिया छोटी है बा खुदा, ये रक्स बड़ा है, ये वाइज बड़ा है, ये दुनिया अब छोटी है। हाय हाय हाय हाय, मेरे साथ है नहीं, मैं असल में जल्दी नहीं करना चाहता बा खुदा, जुमले चार है, मैं पढ़ के आगे निकल जाऊं फायदा नहीं। मैं पढ़ना ऐसे चाहता हूं कि दाद वहां से मलाइका लेकर आए, इतनी भर जाए आंखों में ज़ियाए अब्बास, इतनी भर जाए आंखों में ज़ियाए अब्बास, मुझे कुछ ना दिखाई दे सिवाय अब्बास। उस मौला की विला में बुलंद होने वाले हाथ, जिस मौला को देखकर, जिस मौला को देखकर करबला में लोगों ने कहा कि इसको तो हमने किस रमजान शहीद कर दिया था। ये बोलता अली की तरह है, दिखता अली की तरह है, चलता अली की तरह है, कहीं लड़ता अली की तरह तो नहीं है। मत कोई समझे कि रात 1:10 कोई जज्बाती शख्स बैठा है गुफ्तगू कर रहा है, मैं साबित कर सकता हूं। किताबों में सतरें मौजूद ना हो मैं गर्दन का लहू दूं, ये हकीकत है। खास तौर पे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, ये हकीकत है, कोई जज्बाती बात नहीं है। ये हकीकत है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से डर रहे थे करबला में यजीदी फौजी। मुकालमा यहां तक हुआ कि जब जनाबे कासिम गए तो लश्कर वापस पलटा, जब मार खा के तो कहा कि एक बच्चे से मार खा रहे हो, अभी तो हाशमियों के जवान ही नहीं आए हैं, अली अकबर आ गए तो क्या करोगे। कोई उठा कि आप अली अकबर की बात करते हैं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि अब्बास आ गए तो क्या करेंगे। हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, किसी मकाम पर जाकर कोई इस जुमलों को सुन रहा है, कोई एक बंदा भी उस मकाम पर जाकर उस जुमले को सुन रहा है, मेरे लिए दुआ करना। तेरी रूह नजफ का तवाफ कर रही है, मांग मुश्किल से मुश्किल दुआ दिल में रख। कहा भी तो ये बच्चा है हाशमियों का जवान आ गया तो क्या करोगे, बुज़दिलो डर डर के भाग रहे हो, अब्बास आ गया तो क्या करोगे। एक शख्स ने कहा बा खुदा अब्बास को देखते ही दिल फट जाएगा, अब्बास को देखने के लिए शेर का जिगर चाहिए। जो 9 लाख को 9 दिन अपनी आंख के रोब से रोक के रखे उसे किताबे इश्क में, किताबे वफाए में सुल्ताने वफा अब्बास कहते हैं। जो 7 दिन का प्यासा होके, तशना लब होके दरिया से प्यासा पलट आए उसे वफाए अब्बास सुल्ताने वफा कहते हैं। इतनी भर जाए आंखों में ज़ियाए अब्बास। आप राजी हैं मेरे से, नहीं है राजी? उस टाइम में जुमले पढ़ जाता, बात खत्म हो जाती, मैंने 2 मिनट का तवक्कुफ किया। आप मेरे से राजी हैं कि नहीं? राजी हैं तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा, मैंने बात अभी खत्म नहीं की है, अभी तो बात शुरू हुई है। इतनी भर जाए आंखों में ज़ियाए अब्बास, मुझे कुछ ना दिखाई दे सवाए अब्बास। दास्ताने करबला एक जुमले में सुना सकता हूं, दास्ताने करबला एक जुमले में सुना सकता हूं। इतनी भर जाए आंखों में ज़ियाए अब्बास, मुझे कुछ ना दिखाई दे सिवाय अब्बास और करबला एक जुमले में सुना सकता हूं। दिले शब्बीर सलामत रहो सलामत रहो सलामत रहो। ये बुलंद होने वाले हाथ कभी किसी कमजोर का मोहताज ना हो, इमाम ज़माना के पांव पे लगे हुए। हाय हाय हाय हाय हाय हाय, इतनी भर जाए आंखों में ज़ियाए अब्बास, मुझे कुछ ना दिखाई दे सिवाय अब्बास और दास्ताने करबला एक जुमले में सुना सकता हूं। दिले शब्बीर, दिले हुसैन, दिले शब्बीर, अज़्मे ज़ैनब, आकाज़ादी सलामुल्लाह अलैहि, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आले मुहम्मद, बिस्मिल्लाह। इतनी भर जाए आंखों में ज़ियाए अब्बास, इतनी भर जाए आंखों में ज़ियाए अब्बास,
0: मुझे कुछ ना दिखाई दे सिवाय अब्बास। करबला एक जुमले में सुना सकता हूँ, जुमला क्या है? जुमला तेरे हवाले कर रहा हूँ, बात समझ में आए, बात समझ में आए। हक में दुआ करना, दाद नहीं चाहिए, दुआ चाहिए। बात समझ में आए, हाथ फजा में बुलंद हो, बुलंद हाथ से दुआ करना। बात समझ में आए, तू खामोश रहे, मेरी मेहनत कलम अल्फाज परेशान है। जिगर का लहू नचोड़ के तेरे हवाले कर रहा हूँ। बात समझ में आए, तू खामोश रहे, मेरा कलम, मेरे लफ्ज, मेरी मेहनत परेशान खड़ी हो जाएगी। अब जो बंदा इन जुमलों को सुन के समझ के ना उठे, जो नहीं समझा उससे तो गिला ही कोई नहीं। जो समझ जाए, हाथ बजा में बुलंद ना हो, दुआ ना करे, रोजे क्यामत मुलाकात करूंगा। इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, मुझे कुछ ना दिखाई दे सिवाय अब्बास। करबला एक जुमले में सुना सकता हूँ, क्या जुमला? जुमला तेरे हवाले कर रहा हूँ। करबला एक जुमले में सुना सकता हूँ, दिले शब्बीर

आए, जुमला समझ में आया और जुमला खोलूं आपके लिए। जुमला समझ में आया कि जुमला खोलूं, बताओ जल्दी बताओ। इन लम्हों में तो एक एक सांस कीमती होती है, कौन सी सांस उखड़ जाए पता कोई नहीं।

मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं नौकर जनाब, मैं नौकर, मैंने अभी इंस्टा ओपन अप किया है। खुदा आपके इश्क को सलामत रखे भाई, खुदा आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, खुदा आपकी, खुदा आपकी चाहत को सलामत रखे।

आप सलामत रहें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं, मैं नौकर मैं हजार दफा पढ़ूं। सिमाब अशरफ कह रहे हैं आज जरा सफीन वाला अब्बास सुना दें, सफीन वाला अब्बास सुना दें।

सफीन में मौला बादशाह सरकार इमाम मौजूद अपने बेटों के साथ। मैंने पहले भी कहा है अब अगर छेड़ा है तो छोड़ना नहीं है, अब साथ है या नहीं मैं देखूंगा। मैं सफीन वाला बात शुरू करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं हजार दफा पढ़ूं, मैं नौकर जनाब।

मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम सरकार बादशाह मौजूद, सफैन का मैदान मौजूद। वहां से आवाज आई कि अली आज मैदान में कोई अपना बेटा भेजिए। ये सुनना था जनाब हसन जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि शहजादो बैठ जाओ, तुम मुबाहले के बाद से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हो, आज मैदान में वो जाएगा जो मेरा बेटा होगा। एक एक जुमले में पूरी हिस्ट्री है, एक एक जुमले में पूरी मजलिस है, एक एक जुमले में पूरा जश्न है, एक एक जुमले में सिपारे हसीना कर, एक एक जुमले में कायनात मौजूद है अगर तू समझने वाला हो। मोबाइले के दिन से शहजादो तुम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हो, आज मैदान में वो जाएगा जो मेरा बेटा है। ये सुनना था जनाब हनफिया खड़े हुए, इमाम अली अलैहिस्सलाम के एक बेटे। कहा क्या चाहिए? अब यहां पर बेटा बाप से मुखातिब नहीं है। अब जुमला सुनना, ये जुमला करोड़ रुपए का है, ये जुमला सोने के कलम से सोने के अर्क से अर्श पे लिखा जाए हक अदा नहीं होता। यहां पर बेटा बाप से मुखातिब नहीं है, मुक्तदी अपने इमाम से मुखातिब है। कहा क्या चाहिए? कहा मौला आपकी तलवार, आपका घोड़ा, कुछ लश्कर। मौला ने कहा तलवार भी दी, अपना घोड़ा भी दिया, लश्कर जो मांगा वो भी दिया। कितनी देर लगेगी? कहा मौला फजर आप पढ़ चुके, जोहर के वक्त से पहले सब अदा होगा। कहा तेरी जुरत को सलाम, मुझे जल्दी है। एक और बेटा खड़ा हुआ, बाबा मैं जाऊंगा। क्या चाहिए? बाबा घोड़ा नहीं चाहिए, तलवार चाहिए, लश्कर चाहिए। तलवार भी दी, लश्कर भी दिया, कितना टाइम लगेगा? कहा मौला फजर आप पढ़ चुके, चाश्त से पहले, चाश्त से पहले जंग खत्म करके आपके कदमों में अपना सर रख दूंगा। माथा चूम के इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा तेरी भी जुरत को सलाम, चाश्त में देर है, मुझे जल्दी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम एक एक करके एक जगह रुके। अब्बास, अब्बास को जरा पिनाने शुरू किया। अब्बास क्या चाहिए? मौला ना आपका घोड़ा, ना आपकी तलवार, ना आपका लश्कर, फिर अब्बास क्या चाहिए? हाय हाय हाय, जुमला सुनना, जुमला सुनना, जुमला सुनना। ये जुमले बाद में समझ लेना, 10 साल बाद समझ लेना, 5 साल बाद समझ लेना। मैं जमीन से नीचे हूं, जमीन से ऊपर हूं, मेरे लिए दुआ करना। मौला ना आपकी तलवार, ना आपका घोड़ा, ना आपका लश्कर, तो अब्बास क्या चाहिए? मौला हुक्म आपका हो, फजल खुदा का हो, इजाजत हुसैन से ले दीजिए। हाय हाय हाय हाय हाय, मौला हुक्म आपका हो, फजल खुदा ताला का हो, इजाजत हुसैन से ले दीजिए। कहा हुक्म मेरा है, खुदा के फजल की दुआ भी करता हूँ, इजाजत हुसैन से दिलाता हूँ, कब खत्म करेगा इस जंग को? कहा मौला लश्कर में जाऊंगा, तेरे पहले दुश्मन का सर कलम करूंगा, जब तक वो सर गिरेगा जमीन तक, तेरे आखिरी दुश्मन का सर कलम हो गया होगा। मौला ने जरा पिरानी शुरू की, सफीन में अब्बास यूं चलते आए जैसे तक, तेरे आखिरी दुश्मन का सर कलम हो गया होगा।

उसकी है। आए हाय हाय हाय हाय हाय, जो बहनें इस वक्त सुन रही हैं, जवान भाइयों की बहनें हैं, आपको भाइयों की जवानियां मुबारक हो, आपको आपको भाइयों की शादियां मुबारक हो। किस्मत उसकी है जो चंद दिनों के बाद अपने अहलो आयाल के साथ करबला के मैदान में मौजूद है। ना इम्तिहान तेरा है ना इम्तिहान मेरा है, जो इस वक्त अपने शोहरों की सरपरस्ती में जिंदगी गुजार रही हैं। खुदा आपके शोहरों की जिंदगियां सलामत करे। इम्तिहान उसका है जिसने 11वीं मुहर्रम को बीबियों का काफिला लेके 36 शहरों से गुजरना है, हर शहर में सदा लगानी। ओ मुसलमानों, मुझे एक चादर दो, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं।

एक लम्हे के लिए रुकूंगा यहाँ पे, मौला का आना एक लम्हे के लिए रुकूंगा, क्योंकि जिक्र उसका हुआ है जिसके जिक्र पे हजरत अब्बास आंखें झुकाते हैं। काफला आले बैत दरबारे यजीद में पहुंचा, अल्लाह लानत करे उस पे। मलाउन तख्त पर मौजूद, शायर की कलम उठी, शायर लिखता है कि बोलिया यजीद मेरे सामने खड़ निर्वार देवे, जवे कह दिया दा दस्तूरे, जिता बल वल ना आंदा है लिस्ट दे विचो केड़ी मस्तूरे। वो यजीद मलाउन कहता है कि बार बार बहादुरी की वजह से, अज्म की वजह से, खताबत की वजह से, बाद अज हुसैन बाद अज अब्बास पहरेदारी की वजह से, जिसके मान के ऊपर ये बीबियां अभी तक जिंदा हैं, वो कौन मस्तूरात है, वो कौन मस्तूर है, वो कौन औरत है, वो कौन शख्सियत है, वो कौन हस्ती है, मुझे बताओ तो सही। मलाउन कहता है, शायर की कलम उठी, कहता है मेरे सामने खड़ निर्वार देवे, जिवे कैदियां दा दस्तूर है, जैसे कैदी अपना आप आगे बताते हैं, मेरा नाम ये है, मेरी कौम ये है, मेरे वालिद का नाम ये है, मेरा जुर्म ये है। मलाउन कहता है कि मेरे सामने खड़ निर्वार देवे, जिवे कैदियां दा दस्तूर है, जिदा वल वल लिस्ट ते नाम आंदा है, मैनु दसो केड़ी मस्तूर है। जनाबे अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का सर साथ मौजूद। अब मैं जुमला कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कितना बका होना है, जिस तरह मलाइका वहां से दाद लाते हैं, मैं नहीं जानता कितनी देर बका बर्श पर होना है। मेरे सामने खड़ निर्वार देवे, और जिवे कैदियां दा दस्तूर है, मेरे सामने खड़ निर्वार देवे, और जिवें कैदियां दा दस्तूर है, जिदा वल वल लिस्ट ते ना आंदा है, ओ केड़ी मस्तूर है, पिया नेड़े सर गाजी दा, पिया नेड़े सर गाजी दा, तड़पदा रिया रोंदा रिया रत गयूरे।

सबसे मुश्किल दुआ रख दिल में, जिक्र उसका हुआ है जिसको बाबुल हवाइज कहते हैं। ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कहन कांप रहा है। ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं जुमले अदा करते करते मेरी जान निकले परवाह नहीं।

ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, सर बकफ देख के हैदर के पिसर को, सर बकफ देख के हैदर के पिसर को, सर बकफ देख के हैदर के पिसर को, दुआ करना सर उठा और सर उठा और रश कर अपनी किस्मत में, तू किससे मंसूब है, ये किस शेर की आमद है के रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, सर बकफ देख के हैदर के पिसर को, सर बकफ देख के हैदर के पिसर को, सर बकफ देख के हैदर के पिसर को, जिब्रील लरसते हैं समेटे हुआ

0: ਜੇ ਮੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਖੀ ਨੂੰ
1: मैंने पहले भी कहा आप जवान भाइयों की बहनें हैं, आपको उनकी जवानियां मुबारक, आपको उनकी शादियां मुबारक, आपको उनकी खुशियां मुबारक। इम्तिहान आपका नहीं है, इम्तिहान मेरा नहीं है, इम्तिहान उसका है जो चंद दिन के बाद खुद चल के अपने कतलगाह में अपने जिबागाह में पहुंच चुका है। सदा लगाई अब्बास, क्या इस सरजमीं का नाम करबला है? हाँ मौला, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जगह खरीदी जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम लगाई, आज भी वो जगह जागीर अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर है, मौजूद है। 9 लाख का मजमा है, 10 दिन का भूखा प्यासा तेरे और मेरे नबी का नवासा उनके घेरे में है। जनाब अली अकबर मैदान में गए, ये वाहिद ऐसी शहादत है कि जब जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम घोड़े से गिरे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर बैठ कर नहीं गए, मुर्तजिस पर बैठ कर नहीं गए। वरना जो भी शहीद हुआ, जो भी घोड़े से गिरा, जिसको भी जख्म लगा, जिसको भी नेजा लगा, जिसको भी भाला लगा, जिसको भी तलवार लगी, मौला उसके जस्तखाकी को उठाने के लिए, समेटने के लिए मुर्तजिस पर गए, मुर्तजिस को सदा लगाई, मुर्तजिस को आवाज दी। ये वाहिद ऐसी शहादत है कि जब बर्छी लगी जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को, मौला घोड़े पर नहीं गए क्योंकि मुर्तजिज मिलता ही नहीं था। 9 लाख का बदमाशों का मजमा है, सदाएं लगा रहे हैं, हुसैन ये है, अब्बास ये है, ये है, ये है अब्बास, ये है अली अकबर, ये है कासिम। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे हंस हंस के जश्न मनाया जा रहा है, नाच गाना हो रहा है। नहीं हुसैन यहाँ नहीं, वो सामने अली अकबर, वो जा, वो सामने अली अकबर, वो है सामने अली अकबर। जनाब हुसैन वहाँ पहुँचते हैं, नहीं हुसैन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ तेरा अली अकबर नहीं, वो सामने है तेरा अली अकबर। जनाब हुसैन वहाँ पहुँचते हैं, नहीं हुसैन नहीं, ये नहीं, वो झूठ बोल रहे थे तेरे साथ मजाक है, वो सामने है तेरा अली अकबर। 9 लाख के मजमे में भूखा प्यासा, भूखा प्यासा, भूखा प्यासा अपने जवान बेटे का लाशा ढूंढ तारा तेरे और मेरे नबी का नवासा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना इम्तिहान तेरा है, ना इम्तिहान मेरा है, बार बार बार बार मैं ये कह रहा हूँ, ना इम्तिहान तेरा है, ना इम्तिहान मेरा है, इम्तिहान उसका है जिसके कड़ियल जवान को नेजा मार के दस्ता तोड़ दिया गया कि नेजा निकालने में मुश्किल हो। जनाब हुसैन अलैह सलाम जनाब अली अकबर के पास पहुंचे, जनाब हुसैन अलैह सलाम ने बर्ची निकालने की कोशिश शुरू की। जनाब अली अकबर ने कहा, बाबा जिस तरह आप निकाल रहे हैं निकालनी इस तरह नहीं है, निकलेगी इस तरह नहीं। कहा अली अकबर, कैसे निकलेगी? कहा, बाबा इन्होंने मेरे कान में ताना दिया है कि सुना है तेरा बाप बड़ा साबिर है। बर्छी सीने में पैवस्त करके अकब से दस्ता तोड़ दिया है ताकि नेजा निकल ना सके, पर्ची निकल ना सके। अपने घुटनों को मेरे सीनों पर रख लीजिए, फुल ताकत से इस बर्छी को निकालिए। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दोनों जानू अपने जनाब अली अकबर के सीने पे रखे, पर्ची निकालनी शुरू की। शाह छिकन लगा फल बर्ची दा, शाह छिकन लगा फल बर्ची दा, होई कुल मुरसल हैराने। शाह छिकन लगा फल बर्चीदा, होई कुल मुरसल हैराने। वदा मलकल मौत हुसैन नु आखे, खड़ा मलकुल मौत हुसैन नु आखे, ओ तेरे अकबरदार माने, ओ तेरे अकबरदार माने, ओ तेरे अकबरदार माने। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को लेकर जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में पहुंचे, बहनों से वादा था कि जिंदा मिलाऊंगा। جب خیمہ گاہ کے قریب پہنچے جناب علی اکبر کا سر کاندھے سے ڈھلنا شروع ہوا. امام حسین علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ اب وقت زیادہ نہیں ہے. گرم ریت پر جناب علی اکبر کو لٹایا, صدا دی کہ جس نے جیتے جی ملنا ہے آ جائے. شاعر کی قلم اٹھی, جناب زینب موقع پر پہنچیں, اپنے بھائی کے ساتھ دلجوئی کر رہی ہیں, غم گساری کر رہی ہیں. شاعر کی قلم اٹھی.

जहरा दचाया, तेरी आंख अभी वजू कर रही है, इस लम्हे मेरे लिए दुआ करना, खुदा जाने किस लम्हे किसकी दुआ कबूल हो जाए। जहरा दजाया अल्लाह वसाया, अकबर देसी ने तो जरा हाथ उठा चा, अकबर देसी ने तो जरा हाथ उठा चा, मैं हामले सा तू बरछी कड गिन, मैं हामले सा तू बरछी कड गिन। जनाबे ज़ैनब, जनाबे सैयदा जानती थी कि अली अकबर है, बाप का दिल है, बेटा है, कड़ियल जवान है, तो मशवरा क्या दे रही हैं, गमगुसारी क्या कर रही हैं, दिल जोई क्या कर रही हैं। जहरा दजाया अल्लाह वसाया, अकबर देसी ने तो जरा हाथ उठा चा, मैं हामले सा तू बरछी कड गिन, मैं हामले सा तू बरछी कड।

0: मैंने कहीं पढ़ा मेरी आंख बड़ी देर तक वजू करती रही, जल्दी कर दी लश्करे यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने में। अली अकबर के बाद कितना जी लेते हुसैन।
1: अकबर को लेके हाथों पे शब्बीर ने कहा, अकबर को लेके हाथों पे शब्बीर ने कहा, मुझको अली मिला है मोहम्मद की शक्ल में। सुभान अल्लाह।

0: करते थे।
1: वफा इसको कहते हैं कि वादा किया रसूल ने,
0: उसे
1: वादा किया नाना रसूल ने, निभाया नवासा हुसैन ने।
0: कहा

रात के साखरी पहर, मौला की बिलास सुन के बुलंद होने वाले हाथ, मौला के मसाइब सुनकर नम होने वाली आंख, कभी किसी कम जर्फ की मोहताज ना हो, कभी अपने गम में ना रोए सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम के। माँ हुसैन की राजी हो आप।

लश्कर से कहा शिमर ने मारो अली अकबर, लश्कर से कहा शिमर ने मलाऊन अल्लाह लानत करे इस पे, लश्कर से कहा शिमर ने मारो अली अकबर, हम शक्ले पैगंबर है, पैगंबर तो नहीं है।

मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, इम्तिहान तेरा नहीं, इम्तिहान मेरा नहीं, इम्तिहान उसका है जिसने रुखसत किया जनाबे अली अकबर को मक्तल की जानेब, सर बुलंद किया अर्श की जानेब, कहा खुदा ताला आप गवाह रहिएगा, अब हम में से वो जवान मक्तल की तरफ जा रहा है जो किरदार में, गुफ्तार में, शक्लो सूरत में, सीरत में सबसे ज्यादा आपके महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबत रखता है।

रोमन अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, हजरत बीबी जैनब सलाम अलैहा की अज़्म व हिम्मत और बा किरदार शख्सियत को सलाम। ऐसे ही है, कोई दूसरी राय नहीं है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया रोमन अरशद साहब सुनने के लिए। मरी गर्ल सुन रही हैं, कह रही हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। अच्छा जी, मौसम जिशानियन हमारे साथ है, कह रहे हैं सलामत रहें आप, बहुत बहुत शुक्रिया। जीनिया हाकिम हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं सलामत रहें जिशान, बहुत बहुत शुक्रिया। तावर क्यानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ साथ ज़ुबैर अख्तर मौजूद हैं, काशिफ अवान हैं, सादिया खटक हमारे साथ मौजूद हैं और रूहान मलिक हमारे साथ हैं, कह रही हैं सलामत रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। पलवशा हमारे साथ हैं, खतीजा आरिफ कह रही हैं अल्फाज नहीं है, अल्लाह ताला आपके इश्क को सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर। पकीज़ा इशफाक हमारे साथ हैं, सुंदस हमारे साथ हैं, क्वीन रिजविया हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, जुनाइशा हमारे साथ हैं, लाइबा हैं, सिमाब अशरफ वड़ाइच हमारे साथ हैं, मलिया हमारे साथ हैं, एवरग्रीन हमारे साथ हैं, लाइबा हैं, वर्जीन हैं, जोई हैं, विशाल हमजा हमारे साथ हैं, शाहजादी हमारे साथ हैं, गुल आफरीन हैं, आयशा सदीका हैं, अनम परवेज़ हैं, फातिमा कुरैशी हमारे साथ हैं, रानीन हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ जासमिन हमारे साथ हैं, ईमन हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, फबिया हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद मुनीब हमारे साथ मौजूद हैं, सलामत रहें मोहम्मद मुनीब।

अच्छा एक्चुअली मैं एक मैसेज गो थ्रू कर रहा था, मैंने आई थिंक लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि जिस तरह हम नियाज़े हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम हर साल करते हैं, डेफिनेटली विल डू दैट। तो वो कह रहे हैं कि अभी बता दें, अभी आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप अपने तौर पे अभी चूंकि हमारे पास 10-12 दिन हैं, तो आप जो भी जिस भी कैपेसिटी में कर सकते हैं वो आप अपने पास महफूज रखें, ताकि जब हम स्टार्ट करें तो फिर जब मैं अपडेट करूं या इंस्टा पे आप सब लोग मेरे साथ हैं ही मौजूद, तो जब हम अपडेट करें तो फिर आप जो है वो शेयर कर सकें। और मैंने कहा था कि कोशिश हम इस दफ़ा ये करेंगे कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। उससे होगा ये कि एक तो मैक्सिमम लोग इस कार्य खैर में हमारे साथ शामिल होंगे, दूसरा जो लोग हैं बर्डनाइज कम होंगे, बिकॉज मुझे उस चीज़ से भी आपका बहुत ख्याल है। यकीनी तौर पर आप लोग जो है वो दिल से करते हैं सारे मामलात, और अल्लाह ताला आपको इसका जजाय खैर भी अता करे, माँ हुसैन की राजी हो, लेकिन मैं उस पर्सपेक्टिव पे भी सोचता हूँ। तो बेहतर अभी यह है कि अगर 10-12-15 दिन हैं तो आप अपने तहीं, आपके रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स में, या जहाँ जहाँ पर भी आप इजीली, बजाय इसके कि वो एक दिन पोस्ट अपडेट हो और आपको फिर टेंशन हो कि यार अब 1-2 दिन में हमने क्या करना है या हमारा वो काम स्टार्ट हो जाना है, तो अभी आपके पास 10-12 दिन हैं। 10-12 दिनों को यूटिलाइज़ कीजिए, इस काम में भी यूटिलाइज़ कीजिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को भी समझिए, उसको भी समझिए, और देन फिर जब हम आगे बढ़ें और हम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह यकम मुहर्रम से स्टार्ट हो जाएगा हर साल की तरह। मैंने पहले भी कहा था कि जो भी मेरी हम्बल कैपेसिटी में हो सकता है आई विल डू दैट, बाकी हु एवर हु वॉन्ट्स टू ज्वाइन मी अप इन दिस, मैं कभी भी ना मना करता हूँ ना कर सकता हूँ। कैसे कोई किसी को मना करेगा? नहीं, आप ये किसी की जारादारी तो नहीं है, हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इसके नौकर हैं और नौकरों को अपने हदूद में रहना चाहिए। सो इंशाल्लाह अज़ीज़ हर साल की तरह वी विल डू दैट। सो अभी तक, लेकिन वो मैं मैसेज अभी यही गो थ्रू कर रहा था, दे वर आस्किंग कि अगर आप थोड़ी डिटेल्स के बारे में बता दें, तो डिटेल्स डेफिनेटली हर साल की तरह होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, बशर्ते ज़िंदगी, बाकी चीज़ें आई विल बी अपडेटिंग ऑन माई इंस्टा इंशाल्लाह अल अज़ीज़। अभी तक का जो टाइम है उसको आप यूटिलाइज बेस्ट वे में इस तरह कर सकते हैं कि ताकि आपके ऊपर भी आसानी हो, ताकि आपको पता हो गया यार हमारे पास अभी 10-12 दिन है, 10-12 दिन को यूटिलाइज करके इजीली फिर हम जो है वो कंट्रीब्यूशन उस तरह कर सके। तो दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट वे पॉसिबल जो मेरे जहन में है। अगर आपके जहन में कुछ और है तो आप भी प्लीज़ मशवरा कोई अगर है तो मुझे दे दें, अभी देना चाहें, अभी कमेंट कर दें, मैसेज कर दें या बाद में कर दें, ताकि अगर हम इसको बड़े पैमाने में, मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुँचें इस दफ़ा। दिस इज़ समथिंग विच आई फेल्ट। बाकी आप लोग बताइए, बाकी अगले 4-5 मिनट में आपसे

listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, कि एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।